0: वाह जी वाह, वंडरफुल सॉन्ग, बहुत खूबसूरत गाना। दोस्तों उम्मीद है आप जी ने भी पसंद आया होगा। तो मैं अपनी एक रचना थोड़े नाल पेश कर दें, उसके बाद आप जी वाल लावांगा, आप जी दियां कालां लावांगा। मैं मुकद्दर दा
1: सत श्री अकाल, नमस्ते, अदाब। तुसी सुन रहे हो प्रवास रेडियो दिल दी आवाज। मैं हां तुहाडा दोस्त होस्ट दर्शन सिंह खाकसो। अज दे प्रोग्राम दे विच कुछ दिलजीत बारे गल्लां होणगियां जी। एक वीडियो बाजवा साहब ने बनाई, मैं ओ भी पेश करूंगा, ते कुछ असी आपे भी करांगे। ते लो कुछ अज दिलजीत दे गीत है। दिलजीत दसांझ दा देना जी, उन्हां ते आपां सारी गल्लबात करनी है। उन्हां दे गीत ते फिर बाकी प्रोग्राम नाल चलते रहेंगे। लो जी दिलजीत हुणां दा गीत।

कि अब दोनों बेकरार हो जाए, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आ इस जहां के पार हो जाए।

0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: आजा पिया तो है प्यार दू, ओ गोरी मैया तो पे मार दू, इसलिए तू इतना उदास सुखे सुखे।

आवाज दी दुनिया दे मेहरबान दोस्तो ते प्रवास रेडियो फ्रैंकफर्ट दे खूबसूरत श्रोते हो ए मोहब्बत दा पैगाम देण वाला दोस्ती अते भ्रातरी भाव दियां खुशबुआं खिलारदा आप सब दी जिंदगी दे खेड़ियां च वाधा करदा खूबसूरत लबां ते हास्से खिलारदा।

दुनिया के मेहरबान दोस्तों, ते प्रवास रेडियो फ्रैंकफर्ट के खूबसूरत श्रोते हो, ए मोहब्बत दा पैगाम देने वाला दोस्ती अते भ्रातरी भाव दिया खुशबुआ खिलारदा, वाह वाह। आप सब की जिंदगी के खेड़िया च वाधा करदा,

0: की संडी दीवार जहाँ हाथी मुझे चढ़ गया, चित्र सिंह सरदार अगवा खूनी हाथी का गया।
1: ना सेठ

दुनिया के मेहरबान दोस्तों ते परवाज रेडियो फ्रैंकफर्ट के खूबसूरत श्रोतों, ए मोहब्बत दा पैगाम देने वाला दोस्ती अते भ्रातरी भाव दिया खुशबुआं खिलारदा, वाह वाह। आप सब दी जिंदगी दे खेड़ियां च वादा करदा, खूबसूरत लबां ते हासे खिलारदा, आप दी सोच दियां खिड़कियां खड़का के आप सजणों दिलां ते दस्तक देण वाला।

0: एक गीत और सुनते हैं जिसेंद्र शिंदा
1: भाई। बल्ले बल्ले बल्ले भाई, ऐसा नजारा आ गया भाई।
2: देखो ना जी, कितनी सोनी जन लेके आया है।
1: लो भाई, अमली का ब्याह भी हो गया। वो ताली देता हूँ
2: वाले
1: ला तो शिंदे का नवा गाना और शिंदे का लाई भाई, जिंदा बहुत बैठा बैठा हो जाए।
2: मालको ला देने, पैसे नहीं लेने
1: भाई। वाह वाह वाह वा।

ऑफ कोर्स प्रभात रेडियो योर ओन रेडियो स्टेशन एक्सपोज योर सेल्फ आर यू सी दिस वंडरफुल वर्ल्ड विद योर वॉकिंग आईज एंड एक्सपीरियंस वी आर ऑनली फोन कॉल अवे।

0: चतुरा घोड़ा ये क्या रहा घोड़ा चतुरा घोड़ा चतुरा एक पे रहना या घोड़ा बोलना या चतुरा बोलना
1: एक चतुर नार करके सिंगार एक चतुर नार बड़ी होशियार मेरे मन के द्वार ये घुसत जात अपने ही जाल में फंसत जात हम मरत जात अरे चतुर नार बड़ी होशियार करके सिंगार अपने ही जाल मेरे मन के द्वार फंसत जात।

आपको प्रवास रेडियो बेलकरिया रेडियो स्टेशन एक्सपोज योर सेल्फ ऑन यू सी दिस वंडरफुल वर्ल्ड विद योर ओन वाचिंग गाइड एंड वी आर ऑन फोन कॉल अवे। बिल्कुल दोस्तों, असी तुहाडे तों सिर्फ फोन कॉल अवे ही हां। ते आज पहले आवर विच दोस्तों मैं विसाखी ते गलबात करांगा, ते दूसरे आवर विच साडे सूबा सिंह जी खहरा साहब ने गीतां दे बेताज बादशाह नंद लाल नूरपुरी जी हुणां ते गलबात करनगे। वंडरफुल शायर, बड़े हरमन प्यारे अपने वेले दे, धनी राम चात्रिक जिस तरह वो भी इन्हां वर्गे ही सन, आम जट्टां दे आम कामियां दे।

दुनिया के मेहरबान दोस्तों, ते परवाज रेडियो फ्रैंकफर्ट के खूबसूरत श्रोतियों, ए मोहब्बत दा पैगाम देने वाला दोस्ती अते भ्रातरी भाव दियां खुशबुआ खिलारदा, वाह वाह। आप सब की जिंदगी के खेड़ों च वाधा करदा,

से छुप छुप के सनम रात भर जागेंगे हम, उनसे छुप छुप के सनम आंख झपटे ना कभी चांद तारा।

0: Vai, porco, porco.
1: आज पिया तोहे प्यार दू ओ गोरी मैया तो पे वार दू इसलिए तू

0: आज पिया तोहे प्यार दूं, ओ गोरी भैया तोहे प्यार दूं।
1: वाह वाह वाह राधना जी, आज जी। मदर डेरी है तुहानू पता होना
0: जी।
1: हां जी,
0: हां जी बिल्कुल पता है।
1: दुनिया दी सोहणी मावां जां अपनी मां बारे कुछ कहना चाहोगे
0: जी? बिल्कुल, एक बहुत पुरानी फिल्म ओदा नाम सी मंजली दीदी।
1: मंजली दीदी, हां जी
0: हां जी। मंजली दा मतलब की विचकारली।
1: अच्छा,
0: यूपी च मंजली या मंजला भरा विचकारले नूं कहंदे।
1: मेहरबानी, मेरे वास्ते नवा लफ्ज आए, थैंक यू।
0: मंजली, मंजली दीदी।
1: अच्छा, मंजली दीदी, ठीक है।
0: हां जी, उच्च सचिन छोटा जिहा सीगा ते उहदे उत्ते गाना फिल्माया सीगा जो मैं हुण आप जी नूं सुणाउण लगी मावां उत्ते।
1: अच्छा, सुणाओ जी।
0: ए गीत वैसे तो सारे मावां ले इको गीत गांदे ने, बड़ा हिट है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी
1: होती है, ये तो काफी।
0: ए भी गीत आ, ए भी बड़ा हिट होया सी।
1: अच्छा,
0: ते जेड़ा मैं आप जी नूं सुणाउण लगी हूं किते किते आकाशवाणी ते बजदा सी।
1: अच्छा,
0: और क्योंकि मेरा शौक रहा ते मैनू तो फिर बचपन दे सारे गीत याद ने।
1: तुहानू याद ने जी, मैं बिल्कुल
0: जी। ए भी बड़ा गॉड गिफ्ट है जी, इन्ने गीत याद रखने। मेरा ख्याल है दो ढाई सौ गीत मेनु मुंह जवानी बचपन दी याद ने हुण तक।
1: टेस्ट है, हॉबी है तुहाडी
0: जी। हां जी बिल्कुल। ते दूसरी गल है कि मेरी मां दी देन है। ते मेरी मां ने कहा गुड्डी तेनू ए गीत याद है, तू ए गीत सुना।
1: तुहाडा गुड्डी हुंदा सी?
0: हां जी, हुंदा नहीं सी, हुण वी
1: आ। तुहानू गुड्डी,
0: तुसी मैनू गुड्डी बुला सकदे हो। आजा हुण।
1: चलो जी, मैं अगली बार तो गुड्डी तुहानू गुड्डी दे नां नाल मुखातिब करांगा। बहुत सोहना नाम है गुड्डी। आम पिंडां विच हुंदा कुड़ियां दे नां
0: जी। ते मेरे नानी जी ते मेरे फादर मेनू गुड्डो कहंदे सी प्यार नाल।
1: गुड्डो, गुड्डी, हां जी हां जी।
0: ते ओ गीत मैं आप जी ने बोला।
1: नानी, नानी ते नाना तुहानू प्यार नाल गुड्डो कहंदे सी?
0: हां जी।
1: ते जदों गुस्से च हुंदे सी उदों की कहंदे हुंदे सी?
0: उदों कहंदे सी नी गुड्डो सुनन दई आ उरे आई। तैनू सुनंदा नी? एक बारी मैं नानी ने आवाज मारी, मेरे नाना जी हुक्का पींदे सी।
1: अच्छा,
0: ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿਲਮ ਮੈਂ ਹੀ ਭਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
1: ਹੋਏ ਹੋਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ?
0: ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿਮਟਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਨਾਨੀ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੁੱਡੀ ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਚਿਲਮ ਭਰ ਕੇ ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ।
1: ਅੱਛਾ,
0: ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਘੁੱਟ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਵੀ ਸੁੜਕ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਗੁੜ ਗੁੜ ਗੁੜੂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ।
1: ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਰੁਕਿਆ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ
0: ਜੀ
1: ਜੀ ਜੀ।
0: ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਗੁੱਡੋ, ਅੱਗੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਬੈਠੀ ਹਾਂ।
1: ਅੱਛਾ,
0: ਕਹਿੰਦੀ ਉਰਿਆ ਮੈਂ ਫਰਾਕ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਇੱਚਕ ਦਾਣਾ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੀਲੇ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦੀ, ਮੈਂ ਫਰਾਕ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਗਈ, ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਗੁੱਤਾਂ ਰੇਬਨ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ।
1: ਅੱਛਾ,
0: ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ?
1: ਹਾਂ,
0: ਮੈਂ ਚੁੱਪ।
1: ਹਾਂ,
0: ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਟ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ।
1: ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ,
0: ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਹਾਂਜੀ ਨੀ ਭੁੱਲੂਗੀ। ਔਰ ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਿਕਰ ਵੀ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹੂੰ ਕੇ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਗੀਤ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਫੇਮਸ, ਮੈਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸੁਣਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ।